0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: आइए आज कुछ चर्चा करते हैं सब्जियों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के संदर्भ में। किसी भी फसल को स्वस्थ रहने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर पौधे ठीक तरह से बढ़ नहीं पाते हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिनमें कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक स्रोत के मिश्रित उपयोग द्वारा पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरा क्षमता बनाए रखना तथा मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस प्रकार लंबे समय तक कृषि द्वारा अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। प्रमुख पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विकार एवं लक्षण इस प्रकार हैं। नाइट्रोजन सब्जी फसल की पैदावार एवं गुणवत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका समुचित प्रयोग मृदा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। इस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पुराने पत्तियों पर पहले दिखाई देते हैं एवं पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। फास्फोरस पोषक तत्व की कमी से पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं व बैंगनी रंग की हो जाती है। पोटाश पोषक तत्व की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। टमाटर तथा फ्रेंच बीन्स में इसकी कमी के कारण पत्तियां किनारे की तरफ झुलसने लगती है। कैल्शियम तत्व की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर पहले दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां छोटी एवं विकृत हो जाती हैं एवं किनारे कटे फटे हो जाते हैं। टमाटर, तरबूज, शिमला मिर्च आदि में फल की नोक की सड़न इस तत्व की कमी के कारण होती है। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों पर धारियां बन जाती हैं। पत्तियों की नसों के बीच की जगह पीली हो जाती है। टमाटर, फूलगोभी आदि में क्लोरोसिस यानी हरेपन की कमी इस तत्व के कमी के लक्षण होते हैं। मैग्नीज की कमी से पत्तियों की अंतः शिराओं में छोटे छोटे क्लोरोटिक यानी हरेपन की कमी वाले धब्बे विकसित हो जाते हैं। अधिक कमी होने पर धब्बे हल्के हरे रंग से बदलकर पीले या भूरे सफ़ेद हो जाते हैं। बोरोन सब्जी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी के लक्षण प्रायः नई निकलती हुई पत्तियों पर पाए जाते हैं। टमाटर में फलों का फटना, फूल गोभी में भूरापन, फूल गोभी व ब्रोकोली में खोखला तना तथा गांठ गोभी में तनों का फटना आदि इसी तत्व की कमी के कारण होता है। आइए देखें कि पोषक तत्वों के मुख्य स्रोत क्या हैं और इसका प्रबंधन कैसे करें। अकार्बनिक या रासायनिक उर्वरकों में एक या एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। जैविक पदार्थों में सड़ी गली पत्तियां, टहनियां, फल फूल तथा जानवरों के मल मूत्र इत्यादि होते हैं। इन पदार्थों को खेतों में डालने से पहले सड़ाया गलाया जाता है जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं। हरी खाद के लिए कुछ खास फसलों को उगाया जाता है जिन्हें परिपक्व होने से पहले ही काट लिया जाता है तथा मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह 1 से 2 महीने में सड़कर जैविक खाद का रूप ले लेते हैं। इन फसलों में मुख्यतः वे फसलें आती हैं जो नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण तत्व को वायुमंडल से लेकर अपनी जड़ों में स्थिर कर उसे खेत में उगाए जाने वाली अगली फसल को उपलब्ध करवाती है। उदाहरण के लिए सेस्बेनिया, सनहेम्प, ग्वार आदि। गोबर की खाद का प्रयोग भी अच्छी तरह से सड़ाने गलाने के बाद खेतों में किया जाता है। फलीदार दलहन फसल को भी फसल चक्र में हम ले सकते हैं जिससे कि नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है। राइजोबियम बैक्टीरिया एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव है जो पौधों की जड़ों में बनी विशेष गांठों में मौजूद रहता है। ये जीवाणु मिट्टी में प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। नील हरित शैवाल जैसे एनाबेना और नॉस्टॉक प्रतिवर्ष 20 से 30 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन स्थिर कर सकते हैं। एजिटोबैक्टर एक सूक्ष्म जीव है जो मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर करता है और कई तरह के पादप वृद्धि हार्मोन, विटामिन और कवक रोधी पदार्थ को भी स्रावित करता है। अजोस्पाइरलम के प्रयोग से मिट्टी में 15 से 20 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष नाइट्रोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है। माइकोराइजा के प्रयोग से पौधों में सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। इन पोषक तत्वों में मुख्यतः फॉस्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। इसके साथ जड़ क्षेत्र के आसपास नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ जाती है।
0: श्रोता, अभी आप कार्यक्रम एग्री टिप्स सुन रहे थे।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही शहरों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माही, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा और इसके सी बीच जलयान दोपहर 2 बजे शहीद द्वीप के लिए जाएगा और इसकी वापसी आज शाम 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर 30 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 12 बजे उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और आज शाम 4:30 पर इसकी वापसी शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसी बीच यह जलयान दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप के लिए जाएगा और इसकी वापसी दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलयान की वापसी आज शाम 5:30 पर शहीद द्वीप से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल यानी 30 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल यानी 30 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। इसी बीच जलयान दोपहर 2 बजे शहीद द्वीप जाएगा और इसकी वापसी शाम 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। श्रोताओं, ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम इंद्रधनुष में। आज का हमारा शीर्षक है अफसाना। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, हर गाना एक अफसाना सुनाता है और आज यह गाना दिल की गहराइयों में छिपे एक दर्द भरे एहसास को बयां करता है। इसे सुनते हुए हम हर उस कहानी को याद करेंगे जो हमारे दिल में एक अफसाना बन गई है।

दोस्तों, हर खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत एक छोटे एहसास से होती है। वही एहसास धीरे धीरे एक यादगार अफसाना बन जाता है। पेश है ये गीत जो उसी सफ़र और उन अनमोल जज्बातों को खूबसूरती से बयां करता है। हो सकता है इसकी धुन आपको भी आपकी ज़िंदगी के किसी खास पल तक ले जाए। तो आइए सुनते हैं प्यार के खूबसूरत एहसास से सजा ये गीत।

दोस्तों, जब प्यार की कहानी एक अफसाना बन जाती है, तब हर एहसास एक याद बनकर रह जाता है। ये गीत हमें उसी गहराई और सच्चाई की ओर ले जाता है, जहां एक आशिक अपने दिल की बात को अफसाने की तरह बयां करता है। दोस्तों, कुछ अफसाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं।

0: अपनी ज़िंदगी में प्यार और अपनेपन के एहसास को सहेज कर रखिए। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नए गीत और नए अफसाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी प्रीति। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस की 314वीं कड़ी।

अंगद के क्रोध में हाथ पटकने से पृथ्वी का प्रकंपन देख रावण अपने योद्धाओं को उन्हें मार डालने का आदेश देता है। कहता है, इसे मारकर सब योद्धा सभी दिशाओं में दौड़ जाओ और जहां कहीं भी वानर रीछ दिखाई पड़े उनको खा डालो। इस पृथ्वी से ही वानर और भालुओं का अस्तित्व मिटा डालो और फिर जाकर इनके स्वामी दोनों तपस्वियों को जीते जी पकड़कर यहां ले आओ। इस मूर्खतापूर्ण आदेश पर अंगद मुस्कुराए, फिर क्रोध में गरजे, अरे निर्लज्ज, तुझे मेरे बल का आभास पाकर भी भय नहीं लगता? पर स्त्री चुराने वाले पापी मंदबुद्धि, तेरा काल आ पहुंचा है। मैं अभी तेरा वध कर देता, किंतु ऐसा करने से श्री राम के वाणों की प्यास नहीं बुझेगी। इन शब्दों के साथ अंगद ने धरती पर पैर रोप दिया। बोले, यदि तू मेरा पैर धरती से उठा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, श्री राम भी लौट जाएंगे। अंगद की ये चुनौती सुनकर मेघनाथ तथा सभा में उपस्थित अन्य योद्धा मन ही मन हर्षित हुए। एक एक कर वे अपना पूरा बल प्रदर्शित करते हुए अंगद का पैर उठाने की चेष्टा करते हैं, किंतु उसे उठाना तो दूर, वे उसे हिलाने में भी असमर्थ हैं। लज्जित होकर वे अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 314वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और रविंद्र साठे और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं को परसों तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी तथा हवाएं 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने की आशंका बताई गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि खराब मौसम होने के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05 पर। 7:15 पर आप विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप साहित्य दर्पण कार्यक्रम के तहत मैं सागर में खड़ा हूँ पुस्तक के संपादक एवं साहित्यिक श्री रमेश जोशी के साथ ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे रेशमा, कविता पौडवाल और जसवंत सिंह। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत पद्मा तलवलकर का गायन होगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1338वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक का समय होगा दिन के 11:30 पर। तेलुगु कार्यक्रम में दिन के 12:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें श्रोता सुनेंगे नाटक और सुगम संगीत। दोपहर के 1:30 पर आप फिल्मी गीत फिल्मी कवाली लुफ्त दोपहर 1:10 पर आप फिल्मी कवाली के लुत्फ़ उठा पाएंगे जिसमें कवाल होंगे कलंदर आज़ाद और अजीज़ नाजा। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट प्रोग्राम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स। श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार प्रसारण किया जाएगा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 88% और न्यूनतम तापमान 27°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान 30.6°C रिकॉर्ड किया गया। सूर्योदय 5:30 में हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45 पर। अब लीजिए सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना। दिल्ली से आ रहा विमान संख्या 2937 दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुँचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 1936 दिन में 11:40 पर अपनी वापसी उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना।

0: श्रोता महम आपको याद दिला दे कि आज सुबह 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और ठीक उसी समय आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर साहित्य दर्पण कार्यक्रम के तहत मैं सागर में खड़ा हूँ पुस्तक के संपादक एवं साहित्यकार श्री रमेश जोशी के साथ ली गई भेंट वार्ता आप सुनेंगे। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे रेशमा, कविता पौड़वाल और जसवंत सिंह। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत पद्मा तलवलकर की गायन आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1338वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक दिन के 11:00। तेलुगु कार्यक्रम में दिन के 12:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें श्रोता सुनेंगे नाटक और सुगम संगीत। दोपहर के 1:00 फिल्मी गीतों का 1:10 पर फिल्मी कवाली का लुत्फ उठाइए जिसमें कवाल होंगे कलंदर आज़ाद और अजीज नाजा। ये श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे जन सूचनाएं मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:00 वाले हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। द्वीप समूह के सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संचालन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन होगा और अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती से संबंधित कुछ पदों की रिक्तियों में संशोधन किया गया है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों की भर्ती दो चरणों में होगी। पहले चरण में 50% आरक्षित पदों को भरा जाएगा और दूसरे चरण में बाकी रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले अग्निवीर बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष और बाद के बैचों को अधिकतम 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय संगीत एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने कल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि ये पहल मुंबई में फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2027 के दूसरे संस्करण का हिस्सा है। उन्होंने द्वीप समूह के युवाओं और डिजिटल रचनाकारों से क्षेत्र के स्वदेशी परंपराओं, दुर्लभ कलारूपों और इको टूरिज्म स्थलों को दर्ज करने के लिए इसमें भाग लेने का आग्रह किया है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के सहयोग से शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य हर जिले से उभरते डिजिटल रचनाकारों की पहचान करना और उन्हें प्रामाणिक डिजिटल कहानियों के माध्यम से भारत की अनूठी संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए द्वीप समूह को भी इस विशेष पायलट चरण में भाग लेने के लिए चुना गया है। कंटेंट का विषय संस्कृति और विरासत, स्थानीय व्यंजन, लोक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, प्रकृति, इको टूरिज्म और प्रेरणादायक स्थानीय कहानियां हैं। इसके तहत प्रतिभागी 1 से 3 मिनट की अवधि के छोटे वीडियो, रील्स और ब्लॉग के साथ www.wavespb.com/mwlink/cn31vwv के माध्यम से सीधे इस चुनौती में शामिल या वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना मूल कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। पायलट चरण के लिए प्रविष्टियां जमा करने की विंडो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक खुली रहेगी। विभिन्न स्तर के प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। स्थानीय प्रतिभागियों की सहायता के लिए प्रशासन नोडल टेक पार्टनर के साथ समन्वय कर पंजीकरण और कंटेंट अपलोड करने की प्रक्रिया पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रदर्शन सत्र आयोजित करेगा। अधिक जानकारी माई वेव्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके लिए प्रतिभागी सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से भी संपर्क कर सकते हैं। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से कल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संचालन पर 2 दिवसीय केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय मास्टर ट्रेनर क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के सहयोग से आपदा प्रबंधन निदेशालय में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप

0: आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन सिंडे उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभाग के सचिव रजनीश कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि और निदेशक राकेश दास तथा श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे। पद्मश्री से सम्मानित एवं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने प्रतिभागियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यशाला में 23 हितधारक संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले दिन के तकनीकी सत्रों में ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यशाला का आज समापन होगा। अंडमान निकोबार पुलिस की भर्ती से संबंधित कुछ पदों के लिए रिक्तियों और श्रेणीवार रिक्तियों में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों का श्रेणीवार शारीरिक परीक्षण 7 सितंबर से शुरू होगा। मुख्य भूमि के जिन उम्मीदवारों ने कार निकोबार को अपना केंद्र चुना था, उनसे कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण उम्मीदवारों का केंद्र श्री विजयपुरम में बदलकर प्रवेश पत्र में दर्शा दिया जाएगा। प्रवेश पत्र अंडमान निकोबार पुलिस पोर्टल पर 1 अगस्त से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार पुलिस मुख्यालय के भर्ती प्रकोष्ठ के ईमेल या फोन के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। मत्स्य पालन विभाग के तहत मीठे पानी के मछली बीज फॉर्म नयागांव ने भारतीय प्रमुख कॉर्प के मीठे पानी की मछली के बीज तैयार किए हैं। ये बीज दक्षिण अंडमान जिले के फरारगंज तहसील की विभिन्न पंचायतों के मछली पालकों को कल से वितरित की जाएंगी। इच्छुक मछली पालकों से तय वितरण स्थल से मीठे पानी की मछली के बीज प्राप्त करने को कहा गया है। फ्राई आकार के मछली बीजों की प्रत्येक ऑक्सीजन युक्त पैकेट की कीमत 135 रुपये रखी गई है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने प्रधानमंत्री के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में प्रतिभागियों से बातचीत करने के समाचार को अपनी पहली हेडलाइन बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। द्वीप समाचार ने कैंबल बे में एलपीजी आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के समाचार को प्रमुखता से छापा है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने सांसद द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत क्षेत्रीय निवासियों को उचित मुआवजा देने के समाचार को छापा है। क्यारी द्वारा प्राकृतिक खेती की तैयारियों पर डेमो का आयोजन किए जाने के समाचार को इन्फो इंडिया ने, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने आनंद मार्ग स्कूल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाद दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। द्वीप समूह के सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संचालन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन होगा। और अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती से संबंधित कुछ पदों की रिक्तियों में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की मिट्टी की खुशबू, इसकी संस्कृति का गौरव और वीरों के बलिदान की कहानी, जहां हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक भारत की खूबसूरती और शान को सलाम करता है।

दोस्तों, देश का भविष्य उन नन्हे कदमों में बसता है जो बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं, और ये नन्हे कदमों में बसता है एक बड़ा हौसला, आँखों में सुनहरे सपने और दिल में तिरंगे का मान। यही संदेश देता है ये अमर गीत।

0: ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।
1: देने बाएं देने बाएं।

न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं थम,

हर हिंदुस्तानी के दिल में अपने देश के लिए प्यार, सम्मान और एक बेहतर कल का सपना बसता है। हिंदुस्तानी होने का गर्व हमें हर दिन कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। इसी संदेश के साथ पेश है ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी काशी विजयपुरम केंद्र है।

समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: सुप्रभात श्रोताओं, नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। उम्मीद है आज का दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। श्रोताओं, आइए सुनते हैं साहित्य दर्पण कार्यक्रम के तहत मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ पुस्तक के संपादक एवं साहित्यकार श्री रमेश जोशी के साथ ली गई भेंट वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान के सीकर जिले से फोन द्वारा जुड़े हैं प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पुस्तक मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ के संपादक आदरणीय श्री रमेश जोशी जी। श्रोताओं, ये पुस्तक अंडमान निकोबार की हिंदी कविता की 2025 तक की साहित्यिक यात्रा का एक ऐसा दस्तावेज है जो समुद्र के बीच बसे द्वीपों में हिंदी की रचनात्मक उपस्थिति और उसके निरंतर विकास को प्रमाणिक संदर्भों के साथ सामने लाता है। आज हम श्री रमेश जोशी जी से इस पुस्तक की रचना, यात्रा, उसके उद्देश्य और साहित्य के प्रति उनके दृष्टिकोण पर बातचीत करेंगे। श्री रमेश जोशी जी, आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं पुस्तक मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ के संपादन एवं प्रकाशन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: शुक्रिया
1: जी। जोशी जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि संकलन की परिकल्पना आपके मन में कैसे जन्मी?
2: मैंने कुछ संकलन तो वहाँ रहते हुए देखे थे
1: जी।
2: एक नवपरिमल की तरफ से प्रकाशित हुआ था कृति
1: जी जी,
2: और उससे पहले सुरेश नंदन प्रसाद सिन्हा थे, उन्होंने भी एक संकलन संपादित किया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया था 85 में
1: जी।
2: तो यहाँ आने पर मुझे कई संकलनों के बारे में जानकारी मिली
1: जी।
2: एक तो दो संकलन तो थे व्यासमणि त्रिपाठी के
1: जी,
2: एक संकलन मदन मोहन सिंह जो आकाशवाणी में हुआ करते थे उन्होंने संपादित किया था
1: जी जी।
2: तो उन संकलनों को देखने की उत्सुकता हुई और उन्हें जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कारण क्या रहा ये मुझे नहीं मालूम है
1: जी,
2: लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग छूट गए थे जिनको इस संकलन में होना बहुत जरूरी
1: जी।
2: जैसे नरेंद्र नागर पागल, लेखराज कपूर। द्वीपों की भाषा उस तरह की हिंदी नहीं मान सकते जिस तरह की बनारस या जयशंकर प्रसाद की रही होगी। यहाँ की हिंदी वो हिंदी है जिसकी गांधी जी ने हिंदुस्तानी बोली के रूप में कल्पना की थी। उसमें हिंदी और उर्दू ही नहीं, देश की सभी भाषाओं की झलक मिला करती थी। तो उस में जो लिखने वाले लोग थे, भले ही वो राज अंडमानी हों, भले ही मोहम्मद इलियास हों या और दूसरे शायर हों, पंडित राधाकिशन हों
1: जी,
2: वो उसमें मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मुझे लगा कि ये, लेकिन उनको होना चाहिए था, उनके बिना अंडमान निकोबार की हिंदी कविता पूरी नहीं होती। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई मैं सभी लोगों को शामिल करूं, चाहे वो उर्दू की तरफ झुके हुए हों या हिंदी की संस्कृत की तरफ झुके हुए हों या जो छूट गए हैं उनको। तो इस तरह से हम सबको लेकर के सोचा कि भाई एक काम हो जाए। हालांकि देखो, काम कभी कोई पूरा नहीं होता है। मेरे काम में भी कमियां होंगी जिसको आगे आने वाले पूरा करेंगे, लेकिन बस ये दिमाग में आया कि ये शायद पूरा नहीं है, इसमें कुछ कमियां है, तो उनको दूर करने की कोशिश की और ये एक संकलन बन के तैयार हो गया
1: जी।
2: ये यहाँ बैठ के मेरे अकेले के बस का काम नहीं था, ये बहुत से लोग हैं, मेरे अपने पुराने विद्यार्थी भी हैं, पुराने मित्र भी हैं, मित्रों के बच्चे भी हैं और विशेष रूप से उपाध्याय जी की शिष्या, तो सबने मिलकर के काफी मदद की और किसी तरह से ये काम हो।

0: गया, जैसा भी हुआ है आपके सामने।
1: अभी लगभग 102 कवियों को एक ही संकलन में शामिल करने का विचार आपके मन में कैसे आया? इसके पीछे आपकी मूल सोच क्या थी, इसको हम जानना चाहेंगे।
0: मैं ये चाहता था कि भाई, वैसे तो देखो हिंदी साहित्य में बहुत शोध हो रहे हैं, लेकिन द्वीपों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है, तो इसे वहां से रिजर्व जेल के अलावा कुछ है ही नहीं। जबकि मेरे ख्याल से एक ऐसा हिंदुस्तान जिसका गांधी जी ने सपना देखा था, वो हिंदुस्तान यहाँ जीता जागता मौजूद है, तो उसके ऊपर कल को कोई शोध करना चाहे तो एक ऐसी पुस्तक हो उसमें लगभग एक मुकम्मल तस्वीर बन जाए कि भाई शुरू से लेकर के अब तक द्वीपों में जो काम हुआ है 2025 तक, उसके आधार पर शोध करने का काम हो सकता है। तो ये मेरे दिमाग में था कि एक संदर्भ ग्रंथ जैसा बन जाए, मतलब भविष्य में कोई शोध करना चाहे, कोई और करना चाहे, तो एक रेफरेंस बुक की तरह से तैयार हो जाए, ये दिमाग में थे मेरा। इसलिए मैंने पंडित विजय बहादुर से लेकर के, और मतलब सबसे युवा कवि है बी उदय किरण जो कॉलेज में पढ़ रहा है, वहां तक मैंने सबको ले

0: आधार पर शोध करने का काम हो सकता है। तो ये मेरे दिमाग में था कि एक संदर्भ ग्रंथ जैसा बन जाए, मतलब भविष्य में कोई शोध करना चाहे, कोई और करना चाहे, तो एक रेफरेंस बुक की तरह से तैयार हो जाए, ये दिमाग में थे मेरा। इसलिए मैंने पंडित विजय बहादुर से लेकर के, और मतलब सबसे युवा कवि है बी उदय किरण जो कॉलेज में पढ़ रहा है
1: जी,
0: वहां तक मैंने सबको लेने की कोशिश की है। और क्यों नहीं हो भाई, जब कोई काम हो तो सबका हिस्सा है उसमें, दादा से लेकर के पोते तक का, ऐसी क्या बात है
1: जी। हाँ, अब हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि कवियों और उनकी रचनाओं के चयन के लिए आपने कौन से मानदंड अपनाए।
0: देखिए, कविता कविता होती है
1: जी,
0: ये जरूरी नहीं है कि अंडमान के ऊपर कविता लिखी जाए उसमें अंडमान ही आए। अंडमान में रहते हुए जो भी हमारा जीवन है, हमारे सुख दुख हैं, हमारा परिवेश है
1: जी जी,
0: वो किसी तरह से उसमें होना चाहिए। कुछ लोग क्या मान लेते हैं भाई, अंडमान की कविता मतलब सेल्यूलर जेल के बारे में, दिल्ली की कविता लाल किले के बारे में। मनुष्य है, मनुष्य ही कविता का विषय है। तो जिस भी कविता में अंडमान निकोबार की कोई झलक हो, वहाँ के सुख दुखों की झलक हो, वहाँ के रिमोटनेस की बात हो, कुछ भी हो, वहाँ का एक एक अकेलेपन का एहसास जो द्वीपों में जाकर के होता है, भले ही वहाँ सब कुछ है लेकिन वहाँ बैठ करके आपको लगता है कि हम कहाँ आ गए, कितनी दूर है हमारा घर, गांव, रिश्तेदार। तो इस तरह से वो दूरी का एहसास और कई सारी बातें होती हैं जो वहाँ के जीवन में आप अनुभव करते हैं। तो वो जरा सी भी झलक अगर उसकी कहीं है तो उस कविता को मैंने लेने की कोशिश की है। और भाई बच्चे हैं, वो शुरुआत है उनकी लिखने की। अगर मान लीजिए कोई अनगढ़ है, कोई इतने रिफाइंड नहीं है वो, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी करने की कोशिश की है। शुरू में तो परफेक्शन सबको थोड़ी मिल जाता है, तो इन बच्चों की कविताओं में अगर कोई ऐसी बात है जो परिपक्व नहीं है उसको सुधार लिया गया है, और आगे ये भी लिखेंगे भाई, ये भी बड़े कवि बनेंगे, ऐसी क्या बात।
1: जी जी, अवश्य,
0: वही मैंने
1: एकदम सही कहा आपने। इतने बड़े संकलन का संपादन करते समय आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा, तो अब बताइए कि ऐसी कौन सी समस्याएं या चुनौतियां आपके सामने आई हैं?
0: और बहुत से लोग ऐसे थे जिनका संपर्क मुझे नहीं मिला, तो उनका संपर्क ढूंढने में कई तरह के लिंक जोड़ने पड़े। जैसे इस पुस्तक के कवर के लास्ट में पंडित विजय बहादुर के घर का फोटो है। अब बहुत से लोग उनको जानते ही नहीं थे क्योंकि वो मेरे ख्याल से 1955 में ही शायद रिटायर हो गए थे। बहुत से लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं। तो ये मेरा शिष्य है संजय मल्होत्रा
1: जी,
0: उसका क्लास फेलो है विपिन, जो आजकल बांग्लादेश में एक कोई स्टील प्लांट वगैरह लगवा रहा है।
1: जी,
0: मैंने उससे कहा
1: जी,
0: उसने संजय का नाम दिया, संजय वहां जाकर के उस घर का फोटो लाया। तो ऐसे जुड़ती गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और बहुत कुछ मिलता चला गया।
1: जी जी,
0: और हो गया सब, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसके सहायक भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं।
1: जी, एकदम सही बात। अब एक और प्रश्न, कोई ऐसी रचना या फिर कवि अवश्य रहा होगा जिसने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया, यदि किया है तो क्यों, श्रोताओं को इस विषय में बताएं।
0: वैसे तो 3-4 मुख्य लोग हैं, जैसे मनोज जी हैं, लेखराज कपूर हैं, श्रीकांत उपाध्याय हैं, सेवाराम सेतिया हैं, नरेंद्र नगर पागल हैं, निर्मल कुमार श्रीवास्तव हैं, सब हमारी मित्र मंडली में रहे। तो उनमें कुछ लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, लेखराज कपूर की सरलता है। उनका चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, एकदम सरल साधारण आदमी से जुड़ा हुआ।
1: जी,
0: नरेंद्र नागर पागल की कविता में लय भी है, छंद भी है और सरलता भी। श्रीकांत उपाध्याय की कविता में देखो तो उसमें बड़ी शानदार शब्दावली वाली भाषा है लेकिन उनके बिंब बड़े मजेदार हैं।
1: जी जी, सही बात।
0: सेवाराम सेतिया जो है भाई, उनका तो अपना बिल्कुल सड़क छाप अंदाज है, कहीं से भी व्यंग फेंक देते थे अपना। सभी साथी अच्छे रहे अपने अपने हिसाब से।
1: जी जी, बहुत अच्छा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पुस्तक का शीर्षक मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ बहुत ही आकर्षक और प्रतीकात्मक है, इसके पीछे क्या भाव और क्या दर्शन छिपा हुआ है, कृपया इस पर भी जरा चर्चा की जाए।
0: समुद्र में खड़ा होना कोई मजाक नहीं। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तूफान आते हैं, बड़े बड़े जहाज डगमगा जाते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन ये मैं कौन है, ये मैं कौन है, ये द्वीपों में लाए गए वो बहादुर लोग, वो जीवट वाले लोग जिन्होंने सारे दुखों को झेल करके भी अपने स्वाभिमान को नहीं खोया।
1: बहुत बढ़िया।

0: ये समझिए कि ये सागर में और डट करके पैर जमा करके खड़े हुए वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। तो ये मैं यहाँ के द्वीप और द्वीपों के निवासियों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। जब सागर में खड़े हुए हैं तो द्वीप भी खड़े हुए हैं और द्वीपों के साथ वो खुददार लोग भी खड़े हुए हैं जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में या तो जबरदस्ती लाए गए या जो फिर उनके वंशज के रूप में वापस लौट के नहीं गए, यहीं बस गए। वो चाहे तो जा सकते थे लेकिन उन्होंने इसको अपना घर बनाया। बहुत से सेटलर्स जो भारत सरकार के प्रस्ताव पर आए स्थान को अपना घर बनाया।
1: जी,
0: ये सारे के सारे मजबूती से खड़े हुए हैं। इनको अपने निश्चय से, अपने संस्कृति से, अपने अपनी इंसानियत से कोई डिगा नहीं सकता। और इस शीर्षक की एक कविता, श्रीकांत उपाध्याय की कविता है वो, मैं एक पत्रिका का संपादन करता हूँ, अमेरिका से निकलती है, तो उसमें मैंने उपाध्याय जी की कविता छापी थी, मैं सागर में खड़ा हुआ। जैसे ही एक किताब शुरू हुई तो मुझे अचानक लगा कि इसका शीर्षक मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ क्यों नहीं हो सकता। तो फिर वो कविता भी संकलन में है और ये नाम रख दिया मैंने, और जिसने भी पढ़ा सबको अच्छा लगा।
1: जी जी, सही में बहुत बहुत प्रभावशाली शीर्षक है। जोशी जी, आपसे मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। लगभग आप 79 से 85 तक इन द्वीपों में रहे, आपकी स्मृतियों में वह समय जो आपने बिताया था किस रूप में जीवित है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: वैसे बहुत ऊंच नीच और जाति धर्म में मेरा ज्यादा विश्वास नहीं है, यहाँ भी नहीं था, लेकिन वहां आकर के जो मैंने दृश्य देखा तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि शायद ये दुनिया इसलिए इतनी बढ़िया नहीं हुई या जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई, क्योंकि हम नस्ल के, जाति के, धर्म के भेदभाव में उलझे रहे। द्वीपों में आकर के अचानक मैंने एक ऐसा समाज देखा जिसमें एक परिवार में कई धर्म के लोग हैं, लड़के लड़कियों को बहुत स्वतंत्रता है, कोई अपराध भी नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये तो समझो कि एक ऐसा स्वर्ग है इस धरती पर जो सारी धरती को इसके जैसा बनना चाहिए। तो इंसान में जो होता है भेदभाव का वो यहाँ आकर के बिल्कुल खत्म हो गया। ये चीज मुझे द्वीपों से ही मिली, शायद और कहीं नहीं मिल पाती मुझे। बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई द्वीपों का इस मामले में।
1: जी जी, सही आपका आंकलन है। लघु भारत के नाम से हमारे ये द्वीप जाने जाते हैं और सारी जाति के, भाषा के, तरह तरह के धर्मों के लोग यहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं, ये अलग विशेषता हमारे द्वीपों की। एक प्रश्न जो और है, मुझे जानकारी है कि उन दिनों आप हिंदी साहित्य कला परिषद से सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे, आप द्वीपों की हिंदी साहित्य और कला के क्षेत्र में इस परिषद की क्या भूमिका देखते हैं?
0: देखो उस समय जो ही संस्थाएं थी,
1: जी,
0: एक तो मनोज जी वाली नव परिमल, हिंदी साहित्य कला परिषद का जैसा भी टूटा फूटा छोटा सा भवन था उसका स्थान था और हम तो उसके पड़ोस में थे भाई, सड़क के इधर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की कॉलोनी और सड़क के उधर हिंदी साहित्य कला परिषद। तो ये समझिए कि हम तो हिंदी साहित्य कला परिषद में ही रहते थे, ये मान के चलो
1: इस संस्था के आंगन में आप रात दिन बिता रहे थे।
0: और सबसे बड़ी बात ये कि उस समय संस्था के पास पैसा नहीं, लेकिन लोग बड़े दिल से जुड़े हुए थे उसके साथ। मतलब ये देखो कि कई सौ बच्चे प्रतियोगिताओं में इकट्ठा होते थे, हिंदी पखवाड़ा बनता था, उनको पुरस्कार दिए जाते थे, प्रमाण पत्र दिए जाते थे और कहीं संस्था को कोई ग्रांट नहीं मिलती थी। हम सब लोग आपस में जिसकी जैसी औकात होती थी 10-20-50 रुपए चंदा इकट्ठा करते थे और बड़े ठाक से संस्था का काम चल रहा था। अब मैंने सुना है कि भाई बड़ा भव्य भवन हो गया है, आर्थिक रूप से समृद्ध संस्था हो गई है, लेकिन इतनी समृद्धि के बाद लगता है कि संस्था को अपनी गतिविधियों का और विस्तार करना चाहिए। द्वीपों से निकल करके उसे अपना काम, अपना अस्तित्व जो है वो पूरे भारत में फैलाना चाहिए। और सबसे बड़ा काम उसमें ये हो सकता है कि जहाँ भी कोई पुस्तक मेला लगे, मैं समझता हूँ कि द्वीपों के सभी साहित्यकारों की रचनाएं, पुस्तकें उसमें होनी चाहिए।
1: जी जी, अब मैं अंत में आकाशवाणी के श्रोताओं, विशेष रूप से युवाओं के लिए आपके विचार से ये जानना चाहती हूँ कि साहित्य का जो अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, सौंदर्य, सत्य, संवेदना या फिर सामाजिक परिवर्तन?
0: भाई मनुष्य ही उसका लक्ष्य है। साहित्य का लक्ष्य न स्वर्ग है न कोई देश है, देश मनुष्यों से बनता है, ये संसार मनुष्यों से बनता है, भगवान को हमने नहीं देखा।
1: बिल्कुल सही,
0: और भगवान की मदद हम कर ही क्या सकते। तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई साहित्य भी एक कोई औजार तो है

0: कोई चीज तो है, उसका मकसद पैसा कमाना भी नहीं है, उसका मकसद तो यही हो सकता है कि आदमी को बेहतर आदमी बनाए हम। जब आदमी बेहतर बनेगा तो समाज अपने आप बेहतर बन जाएगा, और बेहतर समाज ही स्वर्ग है भाई, और कहीं स्वर्ग नहीं है। इसलिए साहित्यकारों को ये उनका लक्ष्य होना चाहिए कि कहीं जाति की, धर्म की, सांप्रदायिकता की घृणा न फैलाएं, इस दुनिया को रहने के लायक बेहतर बनाएं, आदमी को बेहतर विचार दें, आदमी के प्यार की, मोहब्बत की कदर करें। लड़ाना झगड़ाना तो किसी भी तरह से किया जा सकता है, बिना बात भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है।
1: जी सही में आपने साहित्य के उद्देश्य जो है वो बहुत सुंदर तरीके से आपने उसको विस्तार उसका दिया है। अब प्रोग्राम को हम अंत करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ पुस्तक से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमसे बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पुस्तक पाठकों तक पहुँचे और उन्हें नई सोच, संवेदना और जीवन को देखने की नई दृष्टि प्रदान करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, मैं द्वीपों के श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, अपनी याद दिलाता हूँ और बहुत आभारी हूँ द्वीपों का मैं
1: जी,
0: जिन्होंने मुझे ठीक ठाक इंसान बनने का मौका दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, मैं सागर में खड़ा हुआ हूँ पुस्तक के संपादक एवं साहित्यकार श्री रमेश जोशी के साथ ली गई भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। इनसे भेंट कर रही थी रेनू बाला। श्रोताओं, आज 29 जुलाई है। हम आपको बता दें कि आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बाघों के संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, बाघ हमारे भारत की शान ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका रखते हैं। बाघ सिर्फ एक खूबसूरत वन्य जीवन नहीं बल्कि हमारे जंगलों की सेहत का प्रतीक है। जहां बाघ सुरक्षित होते हैं वहां जंगल, नदियां और जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है। इसलिए बाघों की रक्षा का अर्थ है पूरे जंगल और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य की रक्षा करना। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक बार फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र ने, बोल है विनोद पांडे की और संगीत से सजाया है रघुनाथ सेठ ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म इम्तिहान का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल है मजरू सुल्तानपुरी की।

0: Good morning, Andaman.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पैसे दूं हस्बैंड जी?
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के

0: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की।

0: AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्णदेव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर

0: 30 हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म प्यासा से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, संगीत से सजाया है सचिन देवबर्मन ने और बोल है साहिर लुधियानवी की।

0: कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड AIDS प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।
6: बच्चों, जवाब सही से लिखना और हाँ, 10 नंबर सफाई के होंगे।
7: अच्छी तरह सफाई करने के लिए उतने ही नंबर।
8: जी हाँ, घर में और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले इत्यादि को हर सप्ताह अच्छी तरह साफ करें। प्लास्टिक के कप, ग्लास और नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें ताकि उसमें पानी जमा न हो। याद रखें, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है।
9: मच्छरों के काटने से बचें, इसके लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। बुखार की स्थिति में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें।
10: वाह भाई, बच्चों ने तो हमें भी पास कर दिया।
6: हर सफाई के नंबर 100 में से 100।
0: श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, जिसके गायक कलाकार है लता मंगेशकर, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचनाकार है आनंद बख्शी।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म जवानी दीवानी से, स्वर है किशोर कुमार और साथियों की, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने और बोल है आनंद।

खूबसूरत, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने और रचना है गुलजार की।

मुकेश और उनके साथियों की आवाज़ में सुनते हैं फिल्म धर्म करम का ये गीत, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: ए भाई, अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया है?
2: डेंगू और चिकुनगुनिया।
1: भाई तो दोनों का गेम कर डाले क्या?
2: अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं।
1: पर भाई, ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई?
2: सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा?
1: वाह भाई, आप तो असल में एमबीबीएस हो।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा,
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको पद्मा तलवलकर का गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ तबले पर ओमकार गुलवाड़े ने और हारमोनियम पर गोविंद पटवर्धन ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए पद्मा तलवलकर का गाया राग जौनपुरी।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप पद्मा तलवरकर का गाया राग जौनपुरी सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत का तचल। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राहत फतेह अली खान के गाय रेड फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने, धुन बनाई तनिष्क बागची ने।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म का गीत। इस गीत के गायक कलाकार, गीतकार तथा संगीतकार तीनों गुरु रंधावा हैं।

जुबिन नौटियाल के स्वर में ये गीत था बागी टू फिल्म से। सईद कादरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था मिथुन ने। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल को फिल्म संजू से। शब्द रचना इरशाद कामिल की, संगीतबद्ध किया AR रहमान ने।

अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए फन्ने खान फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की, गीत रचना इरशाद कामिल की।

0: नवाबजादे, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत बादशाह और सुनंदा शर्मा की आवाजों में। गीत तथा संगीत बादशाह का है।
1: This one coming straight from out of the dance hall.

नेहा कक्कर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था सत्यमेव जयते फिल्म से। शब्द रचना शब्बीर अहमद और इक्का की, संगीतबद्ध किया तनिष्क बागची ने।

0: आस्था गिल और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था स्त्री फिल्म से। वायु के लिखे गीत को संगीत से सजाया था सचिन जिगर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
0: गीत गाता चल कार्यक्रम में फिल्म गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कारवां फिल्म का गीत पापॉन की आवाज में। इस गीत को लिखा आकर्षण खुराना ने, संगीत से सजाया अनुराग सैकिया ने।

दर्शन रावल, अनीस कौर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था लव यात्री फिल्म से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं पापॉन को फिल्म इश्केरिया में।

तनिष्क बागची के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था लुका छुपी फिल्म से। शब्द रचना कुणाल वर्मा की, आवाजें थी तुलसी कुमार और साथियों की। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं। हेट स्टोरी 4 फिल्म का ये गीत जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में, बोल मनोज मुंतशिर के, धुन बनाई आरको ने।

हेट स्टोरी 4 फिल्म का ये गीत था जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1338वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप

0: हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
1: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
1: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है, श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ हाँ।
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ।

0: शाबाश शाबाश, ऐसे ही लगता है मैं कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
0: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर
2: जी। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए।
2: आइए इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है।

0: साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉर्डन।
2: वंडरफुल,
0: शुक्रिया, शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1338वीं कड़ी का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू के गाए दिल का रिश्ता फिल्म के इस शीर्षक गीत से। बोल समीर के, धुनों में पिरोया नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रवीण भारद्वाज का लिखा एवं डब्बू मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर।

0: बनता है।
1: घर में और आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। ऐसी कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सकता हो उन्हें इधर उधर न फेंकें।

चित्रलोक कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं खुशी फिल्म का ये गीत हेमा सरदेसाई और केके की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था फुटपाथ फिल्म से। आवाजें थी आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की, गीत रचना समीर की। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए कुछ तुम कहो कुछ हम कहे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహర్ట్స్ పై ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం.

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब पेश है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे

0: awareness about tiger conservation, protect natural habitats, and address the declining number of wild tigers. Vice President and Prime Minister extend greetings to the wildlife enthusiasts on the day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that with the world's largest wild tiger population, India's success reflects sustained efforts in habitat conservation, scientific monitoring, anti-poaching measures, and the unwavering dedication of forest personnel, scientists, conservationists, and local communities. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। महफिले कव्वाली, इस कार्यक्रम में आज के कव्वाल हैं कलंदर आज़ाद और अजीज़ नज़ा। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं कलंदर आज़ाद और साथियों के गाए इस कव्वाली से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: पनपता है।
1: घर में और आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। ऐसी कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सकता हो उन्हें इधर उधर न फेंकें।
0: और प्यारे बचाव ही एक रास्ता है हे भाई।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: महफिले कव्वाली कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं जिया मिनाई की लिखी कव्वाली, कलंदर आज़ाद और साथियों की आवाज़ों में।

अज़ीज़ नज़ान कव्वाल और साथियों के गाए इस कव्वाली के साथ ही महफिल कव्वाली कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्म।

आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके व्हाट्सएप कीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें, 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज़ और लेते हैं प्रोग्राम का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है महाराष्ट्र से PS नेहवाल, निर्मला नेहवाल, विशाल नेहवाल, सोपान ताइड़े, नारायण इंगले और आशीष मुरहरकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं तीन देवियां फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा मजरूह ने, धुन बनाई ST बर्मन ने।

सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में अब प्रस्तुत है बॉर्डर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई अनु मलिक ने। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मीफा नवाज, बेबी चाहत और सादिया।

महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्री जायसवाल और राखी जायसवाल की पसंद पर आइए सुनते हैं एक राज फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत था अजनबी फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि कारवां, बाला साहेब कारवां और राम निवास अग्रवाल ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था उपकार फिल्म से। स्वर दिया मुकेश ने, गीत रचना कमर जलालाबादी की। इस गीत को सुनना चाहा था राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है गाइड फिल्म से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत था गाइड फिल्म से, बोल शैलेंद्र के, धुन बनाई आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा था जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। हमारे ये श्रोता इस गीत को सुनना चाहते थे। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।
1: लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम, पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today. India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
2: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
1: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही

0: जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
4: हाँ।
3: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
4: हाँ।
3: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है।

0: बिलासपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
2: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है। कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन
1: ऑफ टेंशंस। श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
3: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
1: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु

जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय दोपहर के 2:31 होने को है। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा ये प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे लाइफ ऑन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले रहे होंगे। तो देर न करते हुए करते हैं कार्यक्रम का आगाज़। पर पहले बता देते हैं कि यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम व पता लिख कर हमें नोट करके हमें SMS कीजिए इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें 9474234000 और करें हमारे कॉल का इंतज़ार। स्टूडियो से हमारे प्रेजेंटर कॉल करके आपको जोड़ेंगे इस कार्यक्रम से। दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम का आगाज और लगाते हैं कॉल हमारे पहले श्रोता मित्र को। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: नमस्कार मैडम, मेरी पुराशा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, कैसे हैं?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक रेट में हूँ मैडम। और आपका नए कार्यक्रम में हेलो डियर फ्रेंड्स में जुड़ा हूँ
0: जी। और बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है दिल तो पागल है और गीत बोले कोई लड़की है जब वो हंसती है, गायिका लता मंगेशकर, गीत नया।
0: जी जी।
1: और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक को पूरे श्रोता को रेडियो विजयपुरम में आकाशवाणी विजयपुरम में जुड़े सभी लोगों को, आपके प्रियो रिश्तेदारों को, सभी उद्घोषक भाई बहन कर्मचारियों को, जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत
0: चलिए सुनते हैं इंद्रभान सिंह जी की पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड मैम,
0: नमस्ते। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं
1: मैं हरिनारायण गुजर बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल से। बढ़िया
0: जी? कैसे हैं आप?
1: हूँ जी,
0: और बताइए क्या कर रहे हैं?
1: अभी तो बैठा हूँ घर पे हूँ,
0: और वैसे क्या करते हैं?
1: खेती का काम करते हैं। सोयाबीन
0: तो इस समय क्या खेती में क्या काम चल रहा है आपका?
1: लगी हुई है मैम जी
0: सोयाबीन की फसल उगाई हुई है,
1: मैम,
0: तो ये फसल कब तक तैयार हो जाएगी?
1: ये हो जाएगी अपने सितंबर के महीने में जी।
0: सितंबर के महीने तक का इंतजार।
1: मैम
0: अच्छा बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम गीत तो मैं आज आपको संगीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, है ना
0: जी
1: जी।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत है।
1: जी जी ये गीत आप मैं सुने ना, आपको टून बजाइए, ये गाना कौन सा आज सुनाइए मेरे को।
0: जी बिल्कुल, मेरे नैना सावन भादो।
1: जी मैम, राइट राइट,
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद के इस गीत को।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्ते। कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
1: गीता बोल रही हूँ मैम, डेयरी फार्म से।
0: कैसी हैं आप?
1: जी मैम,
0: कैसी हैं आप?
1: डेयरी फार्म से बोल रही हूँ
0: नहीं
1: मैम।
0: नहीं मैं पूछ रही हूँ आपका हाल चाल कैसा है।
1: ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम आज बर्थडे सॉन्ग सुना दीजिए, कोई सा भी।
0: किसका बर्थडे है?
1: बेटा का बर्थडे है मैम,
0: आपके बेटे का नाम?
1: आदिल है।
0: हम अपने रेडियो परिवार और सभी श्रोताओं की ओर से आपके बेटे आहिल को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: और ये गीत सुनाकर उन्हें खुश करना चाहेंगे।
1: जी मैम, आज जो घर पे है, क्लास में गए, घर पे है, तो मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: चलिए, जन्मदिन मुबारक हो।
1: जी मैम।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो मैम,
0: नमस्ते।
1: आपको नमस्कार। आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मेरा
0: कौन और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा स्कूल लाइन विद्यापुरम से बोल रही हूँ।
0: पूर्णिमा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आपका फोन आया और भी ठीक हो गई हूँ
0: अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी। आज मैं मूवी का नाम है शालीमार और गाने के बोल है आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: लता जी ने गाया है।
0: जी। तो चलिए सुनते हैं लता जी की आवाज में ये प्यारा सा
1: कोई
0: गीत।
1: आश्रम लो
0: जी बिल्कुल।
1: आपकी मध्य प्रदेश से भगवान सिंह भैया है, कीर्ति सिंह राजपूत जी है, राम बाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, राजस्थान से पूरन वर्मा जी हैं, त्रिपुरा से आशुतोष जी, उनकी धर्मपत्नी संगीता देवनाथ जी और अविनाश जी हैं, और शिमला से राकेश जी, गोल्डी जी, और हमारे विद्यापुरम के शैतानकारी से मोनिका जी और मल्लिगम से शिप्रा जी। और अभी लाइव जो सुन रहे हैं सभी श्रोताओं के साथ सुनना चाहूंगी।
0: चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं लता जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: चेहरे बदल जाते हैं।
1: हेलो डियर फ्रेंड्स, कार्यक्रम में गीतों संग बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हमारे लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। दोस्तों, रखते हैं जारी आपके पसंदीदा गीतों संग बातों के सिलसिले को और जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता मित्र से। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स,

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ,
0: हाँ जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हूँ महाराष्ट्र मुंबई।
0: जी, अपना परिचय दीजिए।
1: परिचय
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? दोस्तों, लगता है हमारा संपर्क हमारे इन श्रोता से कट गया है। कोई बात नहीं, आपको हम फिर से फ़ोन लगाएंगे। तब तक सुनिए ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: जी, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, ये मैं विजय पुरम राधम पाल से लक्ष्मी फॉरिंग बोल रही हूँ
0: लक्ष्मी जी, कैसे हालचाल हैं आपके?
1: जी। ठीक हूँ मैं
0: आज कौन सा गीत पसंद करके रखा है आपने?
1: जी। मूवी का नाम है ना तुम जाने ना हम, और सॉन्ग है दिल की हाँ जाले की हाँ, तेरी गली में मैं आ गई
0: बहुत ही प्यारा गुनगुनाती हैं आप।
1: जी मैम
0: वैसे लक्ष्मी, करती क्या हैं आप?
1: जी अभी तो कुछ नहीं करती हूँ मैम, पहले करती थी मैं जी। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता ना, इसलिए भी मैं अभी नहीं जाती हूँ कहीं तो
0: अच्छा, तो घर पर आराम कर रही हैं फिलहाल।
1: जी। करते रहती हूँ बगीचा में कुछ कुछ काम करते रहते
0: तो बाग बगीचे में पेड़ों के साथ रहना पसंद करती हैं?
1: जी। मैम अभी तो थोड़े फुटपाथ में थोड़ी निकली हुई हूँ, थोड़ा बाहर का नज़ारा देख रही
0: चलिए, फिर साथ ही साथ ये गाना भी सुनिए फिर अपनी पसंद का।
1: जी। मैम थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं दिग्दर्शन बोल रहा हूँ मेरठ उत्तर प्रदेश से। बस
0: जी दिग्दर्शन जी, कैसे हालचाल हैं आपके?
1: जी बढ़िया है, प्रभु की कृपा है।
0: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हम सुनना चाहेंगे भोले ओ भोले मेरे यार को मना दे, क्योंकि ना कल से सावन शुरू हो रहा है पूरा।
0: तो
1: आज
0: बाबा
1: गुरु को
0: भोलेनाथ को याद
1: अपने,
0: कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी हाँ,
0: चलिए इस गीत के साथ बाबा भोलेनाथ को आप भी याद कीजिए और हम भी याद करते हैं।
1: हमारे यहाँ को NH 58 है, यहाँ पे लाखों कांवड़िया निकलता है।
0: ओहो,
1: हाँ यहाँ पे, हाँ
0: देखने में कल समा बंध जाता होगा ना?
1: जी हाँ, हरिद्वार से लेके और मेरठ तक, दिल्ली तक NH 58 पे ना एक हफ्ते के लिए बंद हो जाता है, तो केवल कांवड़िया चलता है।
0: भक्ति का भाव रोम रोम में बहता है।
1: जी
0: चलिए हम भी सुनते हैं आपकी पसंद के इस गीत को।
1: ठीक है।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी टिक टिक कर इशारा कर रही है कि आज के इस लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स को अब यहीं संपन्न किया जाए। तो दीजिए इजाजत अपनी दोस्त गीता को। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्स पर ये है विद भारती एफएम श्री विजयपुरम। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:30 और 19 सेकेंड। श्रोताओं, अब पेश है हमारा अगला कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं चुनिंदा फिल्मी गीत। वैसे दोस्तों, कुछ रिश्ते बिना किसी शोर के हमारी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। ना जाने कब अजनबी दिल की धड़कन बन जाता है और फिर हर दुआ, हर ख्वाब, हर मुस्कान उसी से जुड़ जाती है। प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास यही है कि उसे शब्दों में पूरी तरह से बयां नहीं किया जा सकता, उसे तो बस महसूस किया जाता है। शायद इसी एहसास को देखकर दिल कह उठता है,

दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं पर हमारे एहसास कहने लगते हैं। किसी अपने का साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, हर आंसू मुस्कान में बदल जाती है। ऐसा हमदर्द जब साथ हो तो हर दर्द सुहाना लगता है।

नहीं बल्कि एहसासों से जिए जाते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि उनकी यादें हमारी धड़कनों का हिस्सा बन जाती है। चाहे वे हमारे पास हो या दूर, उनका प्यार हमेशा हमारे दिल में बसा रहता है। इस एहसास को क्या कहें, प्यार या कुछ और, जिसे हम अक्सर दिल में छुपाए रहते हैं।

दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी से हमारी मुस्कान जीने की वजह बन जाती है। उनके बिना हर खुशी अधूरी लगती है, हर पल सूना सा लगता है। वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि जीने की वजह बन जाते हैं। तभी तो हम कहते हैं, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए।

दोस्तों कहते हैं हर खूबसूरत रिश्ता दोस्ती से ही शुरू होता है। दोस्ती वो एहसास है जहाँ बिना किसी शर्त के अपनापन मिलता है, जहाँ खामोशी भी सब कुछ कह जाती है और जहाँ एक छोटी सी मुस्कान भी दिल को सुकून दे जाती है। इसलिए आइए हम भी करें जरा सी दोस्ती।

दोस्तों, जिंदगी की इस भीड़ में हम ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो पूरी दुनिया से बढ़कर लगने लगते हैं, और उन्हीं के साथ हम अपनी दुनिया बसाने के ख्वाब सजाने लगते हैं।

100.9 MHz पर यह है विद भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शाम के 4 बजने को है, अब कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विद भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।
1: अपनी सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशंस के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।

इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए, बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। सज्जन

0: उठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग, पार्श्व गायक मुकेश की विनम्र

0: अच्छा ये बताइए अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते हैं ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है
0: बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है। कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बन।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को ही घर वापस आऊंगा। तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ। उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए।

0: तो मतलब ये गाना काम कर जाता है,
1: कभी कभी कर
0: जाता है। अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूं।
2: हम तो मैं समझता हूं इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
0: क्या बात
2: तो
0: है?
2: आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
0: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी,
1: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ वहां पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
0: हाँ।
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे हांकते रहता था और सुनता रहता था।
0: वाह वाह,
1: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं।

0: बहुत मजा आता
1: तब
0: था
1: जिंदगी में, एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था
0: सच में, सच में।
2: और बहुत खुशी थी,
0: बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी हैं, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकिन है।
1: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद है। ये ऐसी ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना
1: दे, बड़ा मुश्किल हो जाता है
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
1: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
1: और एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने।
2: हाँ क्या बात है, क्या फ्लूट उसमें बजाई,
1: क्या बात है।

वाह वाह वाह, देखिए हमने रोशन की बात की, अब गोविंद जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बोलने वाले हो मेरी तरफ। मुझे ना रानी रूपमती फिल्म याद आ रही है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना।
2: हाँ,
0: आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।

0: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान राजकुमार,
0: हाँ। और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है,
1: वाह, सही बात,
0: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना, जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते हैं मुझे

0: का।
1: क्या बात है, मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता,
2: नहीं
1: एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजरू साहब का ये गाना,
2: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे।

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रिफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट के आर्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने

0: इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
1: जी।
0: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया, जैसे गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो कि क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
1: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
0: ठहराव
1: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
0: नहीं,
1: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
0: अच्छा,
1: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
0: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट गया
1: जाए।
0: मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
1: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
0: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
1: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
2: मैं सीरियस जाता हूँ, एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना, भाई मैं भी सोच रहा था
1: तब तक ये सोच,
2: उनको ये गाना है
1: ये, लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में,
0: लग जा।

0: शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से
1: क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है
0: हे।
1: इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना।

0: क्या बात, क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो
1: और
0: जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती, वो इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा।

0: जी
1: सुनना पड़ता है। हाँ, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेज हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के, और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया। कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूं कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं, तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम वो लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं। शो खत्म हो गया, पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने।
0: क्या मजेदार बात है। मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए। ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद, आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आप, आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए वो, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल। और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं?
2: यस यस,
0: है ना?
2: यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
2: Exactly.
0: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
0: बिल्कुल
2: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
0: जी जी,
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो जाने कहाँ गए वो दिन, जाने

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल दुनिया।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।

0: जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब
0: एग्जैक्टली
1: एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
0: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर
1: जी
0: मुकेश जी नहीं होते तो।
1: जी
0: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज़्यादा है,
1: आम जनता के बहुत चहेते
0: बहुत
1: गायक हैं।
0: चहेते गायक थे। यस यस
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं, और मैंने
1: हाँ
0: बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स सबसे ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं, और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में तो हर घर में, हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो
0: बच्चा
1: गुजरात के,
0: दामाद
1: है
0: के, तो
1: ना।
0: दामाद है। यस
1: उनकी जो
0: बच्चे,
1: पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है
0: हाँ
1: ना, उनसे
0: हाँ
1: उनकी शादी हुई थी। और
0: यस
1: ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी।
0: यस बताइए
1: उन्होंने घर
0: बताइए।
1: वालों की मर्जी के खिलाफ ये
0: खिलाफ
1: शादी की थी
0: जाके,
1: सरल वेन के
0: हाँ
1: साथ।
0: जी। अब देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए
0: गुजराती
1: उन्होंने
0: गाने भी
1: और
0: बहुत
1: आज
0: सारे
1: इनफेक्ट
0: गाए।
1: जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन
0: और
1: था। हाँ
0: शादी दिन है,
1: बिल्कुल,
0: क्या
1: ये
0: बात
1: भी
0: है।
1: बहुत दिलचस्प बात है।
0: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा,
1: हाँ मेरा ख्याल
0: फोर्टी
1: है शायद
0: सिक्स में,
1: कितनी
0: फोर्टी सिक्स में
1: हाँ, और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
0: 23 साल। हाँ
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
0: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के
1: तो फिर हम
0: गुजराती।
1: कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो
0: एक
1: गाएंगे।
0: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है,

0: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में।
1: जी
0: बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां
1: बिल्कुल
0: शोज भी उन्होंने काफी सारे
1: काफी
0: किए।
1: सारे किए
0: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
1: एग्जैक्टली
0: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
1: एग्जैक्टली
0: बिल्कुल
1: यस।
0: बिल्कुल। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
2: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
0: अरे बाबा क्या बात है,
2: हूं
0: जरूर।

0: आंखों चार करी ने, बीमार करी ने, मारा भोरा दिलो।
1: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो, ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
2: जैसे मुक्ति।
1: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
2: हाँ, 16 गाने हैं।
1: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
2: हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
1: अच्छा,
2: जो

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी,
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधर आ, आईना हूं मैं तेरा,

क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरूर साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केर्सी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो

0: कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं
1: जी,
0: मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इस इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
2: सावन।

0: और अब बारिश का दूसरा गाना,
1: उषा खन्ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं कहने वाला था
0: इशारों में बात हो रही है सबक
1: बरखा।

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो
1: हाँ, आना जाना ही मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतबा ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या
0: हाँ, हाँ।
1: कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा,
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चींचिया
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए,
0: अरे बाप रे बाप
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मर्तबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद, हाँ, देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे,
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ है मामला गोविंद आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए, तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं मेरी वाइफ को इशारा किया देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो हाँ अरे वाह मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लें फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: क्या करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए।

0: क्या क्या करना पड़ता है।
1: सच में सच में।
0: अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने आपने 2.5-3 घंटे सुन लिए तो अगले 1 साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बहुत लोगों के मुँह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूज़िक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का, 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे ममूसेरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम ख़त्म हो जाती है। वो 3 घंटे का रिलैक्स हमको अगले 1 हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली।
0: अच्छा ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला के बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाएँ, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते हैं।
0: सबसे पहले तो अपना
1: मोबाइल म्यूट रखना
2: वो तो
1: चाहिए,
2: जरूरी है,
1: डेफिनेटली।
2: वो तो जरूरी
1: और
2: है।
1: अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इसको पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
0: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
1: एग्जैक्टली।
0: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
1: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली, जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है,
0: हाँ।
1: जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ।

0: होगा।
1: ऑलरेडी आप कर चुके हो।
0: कब से सोच रहा हूँ मैं।
2: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेले, आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
1: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना,

0: लो भाई गोविंद।
1: हाँ एच है। हाँ
2: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन,
0: ये
2: के
0: जी
2: जिसके बादलों
0: हेलो।

0: हो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे,
1: वाह
0: ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।

0: अनजान प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता
1: क्या
0: है।
1: प्यारी बात है। इसी
0: वंडरफुल।
1: स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और
0: हाँ
1: उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे
0: अच्छा,
1: सुनाई थी।
0: वाह
1: बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है।
0: जी,
1: और देखिए, मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है। ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि
0: जी
1: उनकी अंताक्षरी भी खेलें अपने घरों की महफिलों में,
0: जी
1: अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
0: जीना है मरना है कल के।

0: बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का और आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हवाओं से कहा कि वो तुम्हारी याद का झोंका न लाए, लेकिन नहीं सुना हवाओं ने। बहती नदी से कहा तुम्हारे साथ का एहसास न दिलाए। चांद सितारों से कहा वो चांदनी बिखेरे रात भर, लेकिन कहा किसी ने न सुनी ये बात। हवाएं ले आई तुम्हारे याद की खुशबू, चांद सितारों ने सुनाई सिर्फ तुम्हारी कहानी, और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ निभाने।
1: कले

ये जिंदगी भी अजीब है। जिंदगी कभी सवाल बन जाती है जिसका जवाब हम भी खोज नहीं पाते कभी। कभी ये मुस्कुराहटों की चादर ओढ़कर बैठी रहती है तो कभी खामोशियों में आंसू छिपा लेती है। जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये नए नए मोड़ दिखा देती है। शायद जिंदगी का मकसद हर सवाल का जवाब देना नहीं बल्कि हर अनुभव से हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाना है। इसीलिए कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही सबसे सही जवाब होता है। हम नहीं खोज पाते कुछ सवालों के जवाब।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूट कर प्यार करना नहीं भूलता।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादा

पत्ते पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियां, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियां भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म कश्मीर की कली से SH बिहारी के लिखे गीत की धुन बनाई है OP नैयर ने। आवाज दे रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

जीना तेरी गली में। अब सुनिए इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के स्वर में। गीतकार रविंदर रावल, संगीतकार बाबुल बोस।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए

0: इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: और आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी
1: तो
2: है।
1: सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तराने नए पुराने कार्यक्रम में

0: जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के।

हद कर दी आपने। अब सुनिए इस फिल्म का गीत। गायक हैं आनंद राज आनंद। इन्हीं के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: उसने और आरडी बर्मन को सुना।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजुर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर को रईस फिल्म में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत जामेट का।
2: 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजुर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर को रईस फिल्म में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत जामेट का।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की,

0: 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए,
2: अब सुनिए किशोर कुमार का गाया और अमित खन्ना का लिखा गीत, तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने फिल्म का नाम, दिल से मिले दिल।

0: आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: और ये है कार्यक्रम के अंतिम पेशकश प्रेम रोग फिल्म से। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें सुधा मल्होत्रा और अनवर की।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 7 फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम लेकर आएंगे। इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर। रात 8 हवा महल में सतीश भार्गव की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी, चलो शुरू हो जाओ। चित्रलोक सुनिएगा रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:00। आज के फनकार, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जॉनी वॉकर पर। समय रात 9:30 पर। रात 10 छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 कार्यक्रम रंग तरंग प्रसारित किया जाएगा।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। कलाकार होंगे पंडित सीआर व्यास। कल आप सुनेंगे इसकी चौथी कड़ी। समय होगा सुबह 6:45 और पुनः प्रसारण शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7 बजे। हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 7:30 पर। त्रिवेणी का प्रसारण समय होता है सुबह 8:15 और पुनः प्रसारण दोपहर 2 बजे। नई फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक आप रोजाना सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार कल एक कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सोनू।

निगम पर। इसे आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। रंग तरंग लेकर आएंगे दिन में 11:00। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर प्रसारित करेंगे दिन में 1:00। सदाबहार नगमे लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम में दिन में 3:00 बहनें सुनेंगी कहानी पद्मश्री की डॉक्टर बुधरी ताती। अन्य विषय होंगे बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां, जलने कटने पर उपयोगी टिप्स। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति यूनुस खान की। तराने नए पुराने कार्यक्रम शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए में पार्श्व गायिका सोनाली वाजपेयी से गणेश शर्मा की बातचीत प्रसारित की जाएगी। रात 8:00 हवा महल में झलकी सुनवाई जाएगी बलि का बकरा, लेखक और निर्देशक मुकुल गोस्वामी। रात 10:00 छाया गीत प्रस्तुत करेंगे जी श्याम। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग प्रसारित किया जाएगा। अभी आप आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। ये भक्ति रचना है राजा और रंक फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर, मन्ना डे, कौमुदी मुंशी और विनोद की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: प्रिय किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

ये भजन था ताज फिल्म से। संगीत तैयार किया था हेमंत कुमार ने, बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, आवाज़ लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की थी। अब सुनिए आशा भोसले का गाया नील कमल का ये भक्ति गीत।

अभी आपने नील कमल फिल्म से ये भक्ति रचना सुनी। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी रवि ने। संध्या रंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज प्रस्तुत है तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार, आज हम राग भैरव के बारे में बातचीत करेंगे। भैरव के बारे में कहना तो है बहुत, उसका अगर वादी संवादी देखा जाए तो इसके देवता और ऋषभ वादी संवादी है, लेकिन राग का जो पर्सनैलिटी है वो मध्य पे बहुत निर्भर होती है। तो मैं एक बंदिश गा रहा हूँ।

अभी इस बंदिश की जो सम है वो मध्यम पे है, निर्भर होती है, और हर एक ऐसा समझ है कि वो ऋषभ दैवत वादी संवादी होने की। लोग ऐसे कहते हैं कि ऋषभ दैवत बहुत आगे आना चाहिए, लेकिन मध्यम के बिना ये हो नहीं सकता है। भैरव, भैरव बहुत ही इम्पोर्टेंट है।

ऐसे बहुत सारे पारंपरिक बंदिश है जिसमें हर एक बंदिश में कोई ना कोई बात ऐसी बंदिश में मिलेगी कि जिसे राग में बढ़ावा ही मिलता है उससे। अभी मध्यम प्रोमिनेंट जो भैरव में है वैसे दूसरों भी राग है जो कि राग गौड़ मल्लार, इसमें भी मध्यम प्रोमिनेंट है।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज आपने इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम वाला वलकर्णी और तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राजदेव।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। पांच बजकर 55 पर एग्री टिप्स। इंद्रधनुष कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:15, विषय रहेगा दोस्ती। सवेरे 6:30 पर सुनिए रामचरित मानस गान। वतन के गीत, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 6:40 पर, और सवेरे 6:50 पर आपको अवगत करवाएंगे मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों के विवरण से। देशरागनी कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:15 पर। सवेरे 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सवेरे 8:30 पर सुनेंगे, कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह और निशिकांत वाली, और सवेरे 9 आनंद लीजिए कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर आप एम बालासुब्रमण्यम का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे, और सवेरे 10 सुनिए SMS माय चॉइस कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11:00। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन के 11:30 पर।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नशा मुक्त युवा अभियान का करेंगे शुभारंभ। 1 करोड़ से अधिक युवाओं की भागीदारी के साथ शुरू होगा राष्ट्रव्यापी अभियान। अंडमान निकोबार में विकास कार्यों की समीक्षा लेकर सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की और द्वीप समूह के पात्र परिवारों से 15 अगस्त से पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील। पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए आयुष्मान कार्ड अभियान तेज हुआ।

सांधे समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। विधेयक में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष त्वरित न्यायालयों के गठन तथा समयबद्ध जांच और सुनवाई का भी प्रावधान किया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य कानून को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। वहीं विपक्ष ने विधेयक पर कुछ आपत्तियां जताते हुए इसे अपर्याप्त बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि उद्घाटन समारोह में 1 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। श्री मांडविया ने कहा कि प्रतिभागी कार्यक्रम के दौरान जीवन में कभी भी नशा न करने की शपथ लेंगे। नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी अवसर पर अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध बौद्ध गया से सारनाथ की यात्रा पर गए थे और पूर्णिमा के दिन अपना उपदेश दिया था, इसलिए बुद्ध के अनुयायी इस दिन उनकी पूजा करते हैं। इस बीच श्री

0: जयपुरम के चिन्मया मिशन में गुरु पूर्णिमा पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चिन्मया मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने इस अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
1: सभी द्वीपवासियों को गुरु पूर्णिमा और व्यास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है और जिसे व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, हिंदू संस्कृति में ये एक बहुत बड़ा पर्व है। आज का दिन सारे गुरु परंपरा को, सारे गुरु विचार को नमन करने का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान वेद व्यास जी, जिन्होंने उपनिषद, वेद, महाभारत सारे ग्रंथों की रचना की, उनको कंपाइल किया, उनका जन्मदिन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, सांसद और आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के बीच बैठक हुई। बैठक में प्रबंध निदेशक ने बताया कि कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। निगम देशभर में सिविल इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। अंडमान निकोबार पुलिस ने फर्जी शेयर बाजार निवेश वेबसाइटों और ऐप से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन और डीप फेक वीडियो के जरिए लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फर्जी ट्रेडिंग समूहों से जोड़ रहे हैं। ठग निवेश के नाम पर फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर लोगों से बड़ी रकम जमा कराते हैं और बाद में संपर्क बंद कर देते हैं। पुलिस ने ऐसे ऑनलाइन निवेश प्रस्तावों से सतर्क रहने और साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की अपील की है। द्वीप समूह में प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों से 15 अगस्त से पहले अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थी आयुष्मान ऐप, निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र अथवा जीबी पंत अस्पताल स्थित आयुष्मान भारत हेल्प डेस्क के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अंडमान विधि महाविद्यालय में उपभोक्ता अधिकारों पर 3 महीने का निशुल्क ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम देशभर में कार्यरत एक उपभोक्ता हित संरक्षण संगठन के सहयोग से कॉलेज के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित 7 विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। उद्घाटन अवसर पर उपभोक्ता हित संरक्षण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ PVVS मूर्ति ने विद्यार्थियों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता से सशक्तिकरण आता है। श्रृंखला का पहला व्याख्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार वाई रामकृष्ण ने दिया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर PVN शर्मा ने बताया कि पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऑनलाइन सत्र प्रत्येक शनिवार शाम या रविवार सुबह आयोजित किए जाएंगे। अंडमान कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विषय विशेषज्ञों और अतिथि संकाय सदस्यों की सूची जारी कर दी है। उम्मीदवार कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट से अस्थायी सूची डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को सूची पर कोई दावा या आपत्ति हो तो वह

31 जुलाई की शाम 4:30 बजे तक कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय या ईमेल के माध्यम से भेज सकता है। इसके बाद विभिन्न विषयों के लिए विषय विशेषज्ञों और अतिथि संकाय सदस्यों के पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा। दक्षिण अंडमान उप शिक्षा कार्यालय की ओर से आयोजित अंतर विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तरीय फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले कल भातुबस्ती स्कूल मैदान में खेले गए। बालक वर्ग के फाइनल में कामराज स्कूल ने प्रात्रापुर स्कूल को 1-0 गोल से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में स्कूललाइन स्कूल ने भातुबस्ती स्कूल को 2-1 गोल से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नशा मुक्त युवा अभियान का करेंगे शुभारंभ। 1 करोड़ से अधिक युवाओं की भागीदारी के साथ शुरू होगा राष्ट्रव्यापी अभियान। अंडमान निकोबार में विकास कार्यों की समीक्षा लेकर सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की और द्वीप समूह के पात्र परिवारों से 15 अगस्त से पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील। पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए आयुष्मान कार्ड अभियान तेज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए अब अभिजीत और अलका याग्निक को सुनिए यस बॉस फिल्म में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: लीजिए, अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को जख्मी फिल्म में गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए विनोद राठौर और अलका याग्निक को फिल्म जीत में। बोल लिखे हैं समीर ने।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडर

0: नायक करो वे न सीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: ओले ओले ओले ओले ओले ओले।
3: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
4: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
3: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आए हाय।
6: और ये है जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, नीति मोहन और रैप सोफिया अशरफ की आवाजों में। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने, फिल्म का नाम है जब तक है जान।

ये विविध भारती है। इंद्रधनुष के अंतर्गत लीजिए सुनिए कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग खमाज से। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी, आवाज दे रही हैं लता मंगेशकर।

अभी आपने राग खमाज पर आधारित गीत सुना, फिल्म थी परख, आवाज थी लता मंगेशकर की। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भीम पलासी पर आधारित गीत अनारकली फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र।

ये था राग भीम पलासी पर आधारित अनारकली फिल्म का गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उपहार फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और ये गीत है राग भैरवी, क्षमा कीजिएगा, राग बैरागी भैरव पर आधारित।

इस समय आप सुन रहे हैं अनारकली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र। ये गीत राग भीम पलासी पर आधारित है।

0: अभी आपने राग भीम पलासी पर आधारित गीत सुना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए राग नंद पर आधारित गीत, फिल्म है मेरा साया। आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार मदन मोहन।
1: मैं एक

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए सतीश भार्गव की लिखी झलकी, चलो शुरू हो जाओ।
1: बोलर गुड लेंथ शॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद को बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लिया, खेल भर दिया सामने की तरफ बैक टू द
2: बाबूजी। बाबूजी मेरी फाइल निकाल दीजिए। बाबूजी मैं बहुत दूर से आया हूँ।
3: अरे बैठो, ठहरो, थोड़ा रुको। वाह क्या बात है, अरे मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है भैया, थोड़ी आवाज तो बढ़ा यार।
2: बाबूजी आप 3 दिन से रेडियो सुन रहे हो
3: तो तू चाहता क्या है, क्या काम ही काम करें? अरे देख नहीं रहा मैच कितना जोरों पे चल रहा है? वाह क्या बात है यार, मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है भैया, आवाज बढ़ाना यार।
2: मेरी फाइल का क्या होगा, रोज ऑटो से आता हूँ, किराया भी खराब होता है और समय भी खराब होता है।
3: तो मैं क्या करूँ, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हारी फाइल भी देख लूंगा। अब एक काम करो, तुम 15 दिन बाद आना।
2: अच्छा तो बाबूजी 15 दिन बाद मैं जरूर आ जाऊँ, मेरा काम हो जाएगा?
3: हाँ हो जाएगा।
4: खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल के सीधी कर दे सबकी चाल, कैया गंगा किनारे वाला।
5: प्रकाश प्रकाश भाई क्या बात है, पान वान खूब खाए जा रहे हैं?
4: लो भैया शर्मा जी छुट्टी पर चले गए।
5: अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो भाई मजे ही मजे हैं।
6: अरे वाह भाई, मुझे तो 50 रुपए निकलवाने बैंक जाना है, मैं तो कल देर से आऊंगी।
4: भैया तो अपन कौन से जल्दी आने वाले हैं, अपनी तो वैसे ही नींद 9 बजे खुलती है।
5: भैया बड़ा परेशान किया था शर्मा जी ने, जब देखो एक ही रट, काम करो काम करो, ऑफिस में ठहरना भी यार मुश्किल कर देते थे। इसीलिए तो अपने शंकर जी न मीटिंग में आते हैं और न काम ही करते हैं।
6: अरे उनका ही क्या, अपने यहाँ तो कितनी महिलाएं या तो देर से आती हैं, और अगर आ भी गई तो बस उनके मुंह से हमेशा सुन लो।
5: क्या सुन ले बताओ तो?
6: यही कि मुन्ने के टेस्ट चल रहे हैं। अरे साहब को क्या हुआ मालूम है, अचानक चक्री की तरह नाचने लगे।
5: चक्री की तरह नाचने लगे?
6: हाँ।
5: अरे पी रखी होगी इसीलिए तो चक्री की तरह नाच रहा होगा गंजा।
4: भाई हमारे शंकर की कैसी अच्छी कट रही है, ऐश कर रहा है।
6: अरे मैंने तो एक दफा उन्हें ये शेर पढ़ते सुना था।
5: शेर पढ़ते?
6: हाँ।
5: कौन सा?
6: चलो सुनो। कहो आंधियों से आए,
4: वाह वाह वाह,
6: कहो बर्क से जला दे,
4: वाह वाह वाह वाह।
6: अरे आगे तो सुनिए।
5: हाँ, हाँ, हाँ।
6: ये रहा मेरा नशे मन, कोई आंख तो उठा दे।
5: वाह वाह वाह वाह भाई,
4: बहुत
5: भाई। प्रकाश
4: रमेश जी
5: यार तुम भी तो कुछ सुनाते हो।
4: इन्होंने शेर सुनाया, मैं आपको चीता सुना दूं?
5: हाँ चीता, चीता बिल्ली कुत्ता कुछ सुनाओ यार।
4: चलिए।
5: हाँ

0: एक दिन बैठे बैठे ऐसी तबीयत चली,
1: अरे वाह,
0: क्यों न आपकी बार साइकिल से चले दिल्ली,
2: वाह,
0: ब्रेक तब कसा लिए, हवा भी ठीक देख ली, कहते हुए हम ये चले हनुमान कर भली, आई तब बुरी घड़ी,
1: अरे
0: दृष्टि शनि की पड़ी, दूर भी गए न थे कि साइकिल से बस लड़ी,
1: अच्छा।
0: और हम बेजान से मेड इन जापान से हॉस्पिटल में नर्स का सिंगार देखते रहे, मर गया मरीज हम बुखार देखते।
2: वाह भैया, वाह वाह वाह। भाई प्रकाश, सुना है कि गंजे ने किसी मंत्री के क्लर्क को पटा रखा, इसीलिए ऐश कर रहा है।
1: अरे हाँ, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे कुछ कहने की।
3: हाँ, और इधर शंकर का कहना है कि भैया नौकरी से पहले उन्होंने इतने पापड़ बेले हैं कि बता नहीं सकते, अब तो आराम करेंगे ही।
1: हाँ सही है, मगर वो शर्मा जी सबको खींचते रहते, लेकिन शंकर जी से कहने की कुछ हिम्मत नहीं करते।
3: अरे वो तो अपने नईम भाई को ले लो, उनकी बीवी भी इसी ऑफिस में है, खाली इसीलिए दफ्तर आ जाते हैं, नहीं तो उनका कहना है कि आज तक मैंने 35 साल काट दिए और मुश्किल से कभी ऑफिस आ जाता हूँ, वो भी बीबी को लेने।
2: भैया नौकरी तो होती ही है मौज मस्ती के लिए। अरे अपना जो कैंटीन का कुक है ना, पहले वो एक होटल में काम करता था।
1: अच्छा।
2: बेचारा सवेरे 7 बजे से भजिए तलना शुरू करता था और रात के 11 बजे तक भजिए कचौरी और दूसरे सारे काम किया करता था। मैंने खुद देखा है उसे कि पसीने पसीने हो जाता था बेचारा। जब लेकिन सरकारी कैंटीन में जगह निकली तो उसने अपनी एप्लीकेशन दी, मालूम है क्या लिखा था?
1: बताइए बताइए क्या लिखा?
2: उसने लिखा था कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए, मैं बहुत ईमानदारी तथा लगन के साथ काम करूंगा।
3: तो फिर क्या हुआ?
2: बस नौकरी पर रख लिया, उसी दिन से उसके भाव जो थे वो ऐसे बदले कि बिल्कुल ही बदल गए।
1: अरे भाई भाव बदल गए, वो कैसे?
2: अरे अब तो वो अपनी शर्त लगाता है कि अच्छा? देखो भाई मैं 1 किलो गुलाब जामुन से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 30 आलू बड़े, 30 समोसे और 2 किलो भजिया।
1: अच्छा।
2: चाहे तो कैंटीन का मैनुअल उठा के देख लो, इससे ज्यादा काम करने के लिए नहीं लिखा है उसमें।
1: अच्छा। हेलो एवरीबॉडी।
2: अरे भाई आपने तो आज बहुत ही देर कर दिया आने में।
1: रमेश अब क्या बताऊं, वो रात को बहुत पुरानी पिक्चर आ रही थी तो उसे देखने के लिए जागती रही और सुबह फिर देर से उठी, बस इसीलिए आज देर हो गई। फिर सोचा कि आज शर्मा जी भी तो नहीं है।
3: हाँ भाई, शर्मा जी के रहते तो बड़ा ही मुश्किल होता है।
1: हाँ अब मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होती, अपनी तो भाई आदत है।
2: हाँ, कैसी आदत?
1: हाँ, यही कि देर से आना है तो आना है।
4: अच्छा।
1: कर लो। खैर अब मैं तो अपनी सीट पे जा रही हूँ।
2: हाँ, सीट पे जा रही है? क्या बहुत ज्यादा काम है सीट पे?
1: नहीं जी, अब सोच रही हूँ कि जाड़े तो चल ही रहे हैं और मुन्ने का स्वेटर पूरा नहीं हुआ है तो उसे पूरा कर लूँ।
3: ये तो अच्छी बात है।
1: और फिर शर्मा जी के रहते हुए तो तुम्हें मालूम ही है बड़े छुप छुप के बुनना पड़ता है। अच्छा तुम लोगों में से कोई बताएगा भी कितने दिन तक छुट्टी पे है शर्मा जी?
4: अरे हाँ हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है 15 दिन की छुट्टी।
1: इतने दिन में तो मैं 2 स्वेटर बुन लूंगी। अरे इसी खुशी में चलो मैं तुम सबको चाय पिलाती हूँ।
3: चलो
1: चलो चलो। लल्लू, ओ भैया लल्लू।
3: किसे बुला रही हो? सीनियर चपरासी तो पान की दुकान पर है और जूनियर चपरासियों को जाते आते काम समझा गए, मगर अभी तक यहाँ कोई भी नहीं है।
1: अजी तनख्वाह के दिन तो बहुत से चपरासी दिखाई देते हैं, मगर बाकी दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे ही दफ्तर 2-3 चपरासियों के सहारे ही चलता है।
2: भैया छुट्टी का अधिकार सबका है, एक बाबूजी को मैं जानता हूँ जो साल में 50 CL लेते हैं।
1: 50 CL?
4: अरे, अरे वो कैसे?
2: अरे भाई बहुत आसान है, जब दफ्तर ना आना हुआ तो घर से फोन कर दिया बीमार हूँ नहीं आ सकता, फिर 2-4 दिनों में आकर ज्वाइन कर लिया।
1: तो कोई पूछता नहीं हो?

0: एप्लीकेशन भी नहीं मांगता।
1: अरे भाई, एप्लीकेशन मांगने वाले नहीं तो उन्हें ये तरकीब बताइए, फोन करो घर बैठे और बाद में आओ और दस्तखत कर दो।
0: वाह भाई वाह, मान गए। क्या क्या तरकीबें बनाई हैं लोगों ने।
2: ओहो, लंच हो गया। आज तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलो भाई चलो, लंच कर लेते हैं।
1: अरे लंच पे तो चलेंगे यार। प्रकाश, एक सलाह लेनी थी आपसे।
2: हाँ हाँ, बोलो क्या बात है।
1: बात यह है भैया कि एक मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ।
0: स्कूल?
1: हाँ।
0: वाह।
1: उसका कोई अंग्रेजी नाम तो बताओ।
2: अरे कोई भी अंग्रेजी नाम रख दो, जैसे मिनी कॉन्वेंट, शॉर्ट कॉन्वेंट, लॉन्ग कॉन्वेंट, हाँ चलेगा।
0: मॉरल कॉन्वेंट।
2: हाँ बिल्कुल। मगर यार, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएगा कौन?
1: स्कूल में पढ़ाएगा कौन? अजी हम पढ़ाएंगे और मेरा बेटा पढ़ाएगा।
2: मगर तुम तो सर्विस में हो ना।
1: सर्विस में है तो क्या है, अभी बस स्कूल की एक शिफ्ट लगाऊंगा, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और फिर 1 बजे आकर के ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा।
2: मगर तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो और तुम्हारा लड़का भी मैट्रिक पास है, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री भी आती रही।
1: सप्लीमेंट वो तो क्या हुआ भाई? अरे भाई, वो लोग जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भिजाते हैं, उन सबको क्या अंग्रेजी आती है?
2: ये बात तो सही है।
1: अब तो अपना वो कलुआ कल अपने बच्चे को लेकर आया था, बोला भैया जी से कहना मुझे अपने लड़के को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, कोई स्कूल हो तो बताओ।
2: हाँ भाई सच है, आजकल हर कोई अंग्रेजी स्कूल की तरफ दौड़ रहा है।
1: अच्छा भाई, तो फिर मैं चलता हूँ।
2: अरे अरे, अभी अभी आए थे और अभी अभी चले।
1: बेटा ये नौकरी है, इसे मेरी तरह से करोगे तो ऐश करोगे।
2: हाँ भैया बिल्कुल ठीक कहते हो।
1: अरे यार प्रकाश, एक किस्सा याद आ गया।
2: क्या वही कि नौकरी कैसे करते हैं?
1: नहीं नहीं, एक दूसरा किस्सा।
2: चलो ठीक है, ये भी सुना दीजिए।
1: भैया एक बार मैं अपने गांव गया था, वहां मुझे वर्मा जी मिल गए। बोले भाईजान, क्या आप भोपाल जा रहे हैं?
2: फिर
1: वहां दफ्तर में जाकर बता देना कि मैं अभी 2-4 दिन और दफ्तर नहीं आ पाऊंगा।
2: फिर तुमने ले जाकर दरखास्त दे दी होगी।
1: नहीं यार, मैं वर्मा जी के दफ्तर गया तो वहां कुर्सी पर एक पुराना कोट वर्मा जी का टंगा हुआ था।
2: फिर
1: मैंने पड़ोस वाले से बस इतना कहा, वर्मा जी, बस इतना ही कहा था कि वो सज्जन बोले, अजी साहब वर्मा जी यही थे, अभी उठकर चले गए होंगे, ये देखिए ना उनका कोट टंगा है, आते ही होंगे।
2: वाह भाई वाह।
1: फिर क्या, मैंने उन्हें बताया कि भैया वर्मा जी ने ही मुझे भेजा है और कहा है कि 2-4 दिन और नहीं आएंगे, उनका कोट ऐसे ही संभाल कर टंगे रहने दें। और तो और भैया, और सुनो, जब मैंने वर्मा जी की टेबल पर देखा तो एक तरफ लिखा था, हिंदी में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए, और दूसरी तरफ उनके हाथों का लिखा हुआ था, ऑफिस में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए।

0: तो ये थी झलकी, चलो शुरू हो जाओ। लेखक सतीश भार्गव, निर्देशन किया अजीमुद्दीन ने। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर

0: वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनिधि चौहान और केके के गाए गीत से, बोल इरशाद कामिल के संगीत प्रीतम का, फिल्म का नाम खट्टा मीठा।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
4: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण ते भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती विने दरी, मारा दिलीप सेन जी पधारी यार।
3: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
6: अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में अब सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। आवाजें मोहन कानन और अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म का नाम लुटेरा।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर

0: संपत्ति ऊर्जा साझा करेंगी, तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
1: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए लियोन डिसूजा और सुजैन डीमेलो की आवाज में एक दीवाना था फिल्म का गीत, बोल जावेद अख्तर और ब्लेज के संगीत ए आर रहमान का।

निशांत खान के संगीत निर्देशन में अब सुनिए स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, आवाज जावेद अली की, फिल्म का नाम ये साली जिंदगी।

ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अलीशा मेंडोंसा और मोहित चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक

0: से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
2: आज राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, केनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
3: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
4: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
5: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि

0: वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने

0: सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं तलत महमूद के गाए गीत से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सू आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: लीजिए अब मोहम्मद रफी को सुनिए फिल्म राजकुमार में। हसरत जयपुरी की लिखी इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। रंग

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म जिद्दी में। हसरत जयपुरी के बोल है और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

अभी आपने जिद्दी फिल्म में लता मंगेशकर को सुना और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में साथ दे रही लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में सुना। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। अब दीजिए इजाजत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना? किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। किसने कहा एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: मालिक,

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे, दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग हंस

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मस्तराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खासतौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: यार लैंकलिंग अरे बाय।
1: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देश

0: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दहिया का याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है। बोलो क्या तकलीफ है?
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है? रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है?
2: दुखता उगता नहीं, कसमसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ ये तो नवा रोग लगत है। सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो, पहले ई बताओ सोवत कैसी हो? चित पट के करवट
2: कैसे? ऐसे
3: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना आए तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा?
1: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे?
1: इधर घूमो करवट,
2: पल्ले नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
1: गोबर गणेश कहीं की।
0: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
4: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता?
1: उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
4: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता। तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
1: छोकरी? तुम्हारा टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
4: यस।
1: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता?
4: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
3: जाएगा। राइट राइट।
4: मैं सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
1: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
4: यू शट अप। सुजन तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला?
1: मैं तुम सिस्टर कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है। मैं तुम लोगों छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
6: हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा।

0: है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, मन यू जाएगी आजादी।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

8.9 MHz पर ये है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों के बाद आप विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

सैकड़ों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखे तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कहीं ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कहीं ही नहीं गई होती।

पहाड़ कभी एक दिन में नहीं दरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहां प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस। वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

कभी कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस। हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर किराया नहीं जा सकता।

जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहां गया।

मौसम मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार तट के आसपास समान रूप से तेज हवाओं के कारण जिनकी गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। अतः मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 31 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10 बजकर

15 मिनट हुए हैं हमारी आज की दूसरी सभा। श्रोताओं, अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।